0: विगत 39 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ।
1: शुभ दिन, शुभ दिन। प्रायोजक
2: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
3: वेसा डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

0: काम झंडू बाम
1: अब झन्डुबाम रेगुलर र अल्ट्रा बजारमा उपलब्ध छ।
2: शुभ दिन प्रायोजक ग्लोबल आइडिया।

0: महिना हो भदौको, अनि साथ इमेज एफएम 97.9 को।
1: जीवन शैली मात्र इमेज एफएम 97.9 मा।

नमस्कार, म प्रदीप कुमार मैनाली। संगत विकमा शिवराज विश्वकर्माको स्वर, मेरो शब्द मेरै संगीतमा राख्दैछु यो गीत।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।